0: ये रंग तो बेले का चिंगो
1: पापा
2: मार क्यों चोर जाऊँ चुप्पी तो डांबा
1: ये क्यों चुस्ती के
2: हाँ क्यों वो तो ताजीस
0: जीस
2: मार चुप्पी ना
0: लॉ ये तो स्कूटा
1: पापा कौनसा रिम्यू कर सेंगे इंबे सेह करो रे तंदर तिंगो ता जग मारता पापा रिम्यू तो सो लेंगे ना
0: 嘉兴公主哪里？婆罗门公主的车要我去嘛是？
3: 对不对？不对，这要嘛是？嘉兴公主俺就去到婆罗门公主的车不打？
0: 打这下这下，接着下这下。爸爸。是。我说阿姨呢？你这前年有二百啊？你土路啥不打？听我借口你有嘛是？叫我拉不住阿舅。
1: 舅舅，舅舅，杨生，你对不对？你生不辛苦？哥，有我，他来应付了，明白？赵嘉欣，赵嘉欣，喂，喂。
4: 好，你还没去做不当去？没有煮蛋了？
5: 切的嘛对？
4: 让别带带送。
5: 瞧吧，几根子的，几排骨的，羊肉面多。让了嘛别等给，慢别等给。
4: 你让了吗？别得给！叶主播，让给，我们闯不来洋气，麻烦叫俺到警察局。马上，警察有你的，
5: 有气，有气啊！
4: 啥意思？你，
5: 出来你说，给你个年年抓住说。
4: 你，
5: 不是，你，你给你那怕气呢？不然去打个招呼，去那马蹄街，这。